0: जी 1260।
1: जी 1260 का है
0: नहीं आती एमसीएफ वो अभी कुछ निश्चित होकर
1: with MCF lobby and Mutsara?
0: With the subject that we're cleaning, Adam Coco.